Igana bu Rafina nagani. Rafina kona nagar. Haiti eri terega Brazil ka hakulun teri. Hemvan kulun teri bana tayyar Casemiro nagar di kona eri teri. Bodum fahatun difa ku bula seri berfenu jehlefa. Haiti kun teri kontra kola kuri vannan as half ki midas sama jehla kuna tu matkola ya buru kun teri Danilo. Danilo ka nattu af denga kun teri nattu kuri fonu wali bol fahatun. Marquinhos difa ku. Marquinhos difa ku bula fahatun kun teri fajile vana kes Casemiro. Casemiro midas kuri vadeje. Vadeje tete kuri fonu wali buhusko buru jehla kun teri ya. Nattu af kuri fonu wali bol tadi karna berenge diye. The keeper go matin Rafina go that the phone wall must have a keeper the Vara Bera Nukumere Terea Mado Madam Bolum Bomatin go to the phone wall the bola go the Mazun Bera D go the Mazun go the Mazko phone wall the bola but I need to consider Rafina fire Nagadini the contendator Dierka Jela Kai the Kunte Bomatin phone wall the Hantanikar the FD Bera and the foot hacker what a last one the Kalam carry carrying left ball bearing goes in. Bavis met Kulefa. The team Kavistim Kazan. From Kutran Haiti, Kuntri back of Fata. Edu, Ed Konto Kola, Kuri, Medon Kari, Kuntri and Wolf and Manani. Delcross Kuri, Sensakate, Kuntri and Kuring Arimati. Duane, Duane Konto Kola back of Fata, and Kajasa, the Edu, Ed Konto Kola, Sensaka carrying Haiti half Katrin Kari with the Kuntriko. A solo number Douglas D. Brazil konte bola attack kuri tif Casemiro Casemiro kuri Vinicius kai dekho na atwa vannani Vinicius eri tere vadichche konte bad kola konte mena kana atwa kuri fonwal bol keeper difa ko dende mudi no number fonwal bol gol tere nge vani the foot of Vinicius fonwal bol keeper atun duwegen rebound sa nokuti nukin bola kare gori kulun teriya go tere vaddali na natija ki एक के सुमे बुर्जी देखे तेनो नंबर खून्य काम है खुद दिने बुर्जी देखे फुर्तम गोल मार रीत को मतलब पूरे तीर्थ फोन हुआ दिन विनिशियस एरिया का रिबॉल दी बनी विनिशियस एर ते नगाय दिन मसे कुरे नटुआ सीधा गोल दे फोन हुआ कीपर दिफा कुरे बोल देंगे कैरी हुरी नुआ नंबर खून्य अरे फुर्त में चुका कुंजी अनुकूल है ना इसमें चुका फुर्त में गारा के हिमेने के कुल नुकम होरी नुवा नंबर मैं नतीजे के ब्राज़ील एके हाइटी का दाने नुचे Half ke kulong kuri dar rekis mokong kuri ke Brazil. The goal je half Brazil kono kono teni. Asal itu feo no. Goal wate fi inna ni. Haiti kono teni fagat jehilaf. Haiti father for the first number. Del cross flag the other ball of what the team. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Fashani. Pull on Brazil half medaya sabu bol beru gen tie fan service met kula efa kisma kuriga Brazil fan service met kula maiki hydration pure kan edie half ke hydration pure ka tie re kisma kuriga Brazil Brazil ke gol Kami ko tifoni, one number kunya. Naya the team ko tens, ebe ko benchi kari matupol dyan fin bol mami ogu to coachong iru sadus demun tate fin. Adi nikuru ko padar nikuru puga, dekhi mene ane the team ki orko. Adi Scotland.
அது ஸ்கோட்லேண்டா மொரோக்கோ நிறைய குழை விடும் மெச்சு மணி மொரோக்கோ எக்கஸ் மொரோக்கோ மியோகுத்து செய்யப்போதுக்கு எக் பண்ணாக கொத்தி ஹத்தர் பாயிண்ட் ஆகி அனௌன்ஸ் பண்ணி இமெச்சுக்கு ஸ்கோ இல்லாக்கி குணாக்கம் பண்ண பிரேசில் சமா மொரோக்கோய எவ்வர பாயிண்ட் லிபி போது கொடுக்கும் எவ்வர் வான் அனௌன்ஸ் பண்ணி மெச்சு ಎಲ್ಲನೂ ಸುಂದರ ಬರೆ ಪೊಡ್ ತಫಾತ್ ಎಕ್ ಎಲ್ಲನಿಗೆ ಬರೆ ಪೊಡ್ ತಫಾತ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕಾಮೆಕ್ಕು ನಾವು ವಾಣಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಇವಣೆ ಆರಾನೆ ಯಾರು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬುರೇ ಕಫಾವ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಕುಳಿತೇನೆ ಕೊಡೋ ಫಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮುಂದಾನೆ ಐಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಆರಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಈವೆಂಟ್

0: शुक्रिया।
1: नहीं मनी
0: बाबा
1: माशाल्लाह वाला रीचे की ने दस कुरी मदा मदा एवसर का दस कुरा मासी के कुरें ता को गेंद तभी दस कुरे उने नूनी आडू ये भी विता नेंगे
0: दस कुरी
1: हम दस कुरी दो
0: लब्बा
1: हम एक नहीं दस कुरी
0: लब्बा
1: ऐं कुछ जगह ही तेरे कमाए को की के मुबारक का मुबारक एम प्रथम में मन्ना तो क्या दिन में उरिहा जनवार तो दुए रेस जहमुंदे इंगे दिन हिंसा में बुने उरिहा जनवार तो कुलेवर कुलुने ये रेस जहानी में क्या कुलेवर कुलुनु वाह का दिन कीने वाने वाह क्या का दिन कीने
0: वाने
1: जनवार तो दानी एम में क्या खां दिन जनवार तो
0: कुले में क्या
1: खान दिया हिसाब दें एने मुनी हिसाब
0: लब्बा
1: हिंगा नि माल मा विवाह का दें की रे दें वाणी
0: क्या गे आने का कुलन दानी
1: आने का कुलन दानी वाह का नि मेन की ने विमा वाह का नि माला नि खेने में हर मी इबाना नि माला का मा वन्या
0: निदन दानी उरी हायत
1: निदि मने मुनी
0: लब्बा
1: निदान दान सहकादि मुबारक में हर में बाई जनवार तमें हर श्रेष्ठ जहाँ मुंदने फारे का विदान मुबारक तक तैयार वाणी का मावेस तो
0: लब्बा
1: फारे का ये मुबारक तो मालूए के विस नी में दान है
0: लब्बा
1: ऐरुं की ने इबाना ने मालानी
0: लब्बा
1: अने ए मुसल के टीम मालूए के ने मालानी
0: लब्बा
1: कौन टीम के एवं देने ऐरुं मुसल टीम दो बाहर दुआने
0: लब्बा
1: बाहर का मुसल वो इधर एक क्या बाहर दुए वेती वो शो वेला अरे वकील साब का गोसा ये रंग हम वेला नहीं माल फाट
0: लब्बा
1: ऐसे से दान दो
0: लब्बा
1: एक हम को इबाना मैं एवं देने हम मुसल दो
0: लब्बा
1: हम वाले रंग लेंगे मैं हर वाह का मैंने मुझे बोता का मैं बाला नहीं मुसलांग मुसल टीम में वन लिबिगे मुबारक तुम वन लिबिगे निमुनु कवा इंगे
0: लबा
1: आ वकेला ने इंगे
0: लबा
1: एमा मिहार मेथी ने माला वगुते जेफा वगुते ने गे हेवा वाक्या गे मफ मे वी किहिने को दिने वाक किया देन त मे वाक्या ग मिहा हिसाब अंग यार वी गे जंगली गे हिया दे पिय गस्त दशुग एक्वेरी कमा माजलुग कोम्मे दुआ कुस ए सहारु गे जनवार ता कुले हदा रेस जेहु मा एके चबुरे दुरंग आनिके ती फुम्मा दोमकी मिसारु के एम्मे मशहूर देखुले वरु

레시지히르 데티메 고이도 데티마카 베히겐 고이그로 미 모루비 후두무살게 티메 티메 이바나 니메 고탄 후두무살게 티메 니메 고타도 에헤메 마 미고타 메티 와하카 니메 파 에헤마 메하르 프로그램스 니 마라와고 투제 헤티 구라투 메도 엠메 팅쿠 딘나 메 와하카 다카라우니 헤마 팅쿠 딘메스 메티 하마 구라투 헤번 데번 팀 바나가 ऐम हुरी हाँ मैं तो बेअवेरी भी हुरी हाँ कुदिन ना बस इनाम दे बे मैं थिंक कुदिन ना बस ये कुदिन ना की मन्नत इम्शा इबाना मैं तुम कुदिन ना स्वराब बड़ा मरहबा अनि कैसा मा बदलवाने का उम्मीद करने में कुदिन ना ऐहें दुआ को मैं सोया कुती कुदिन ना बदलवालों के उम्मीद का मैं तो पातुं दता वाकिवेला नी मैं ती हुरी हाँ कुदिन्ना मेदुगे शो उफेदी मेदुगे शो वे सुफेदी आशत फिना फिराक दें फोनुमुगा मेहे तिरवेदिनी सूदा सलें हुरी हाँ कुदिन्ना स्वरंग उफावेर दुआ का ये देमु शोनी माला फवकिवेलान अस्सलामुअलैकुम

0: देखे वो डिगंबा रस खलांगे।
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
0: आदि साजिद को नमाद खुरा मी होंगे तेरेगा खले गफान हरका तेरे वड़ा गन्नवा तम विस इखलांगे देखे वो डिगंबे।
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: हम कशवरों इखलांगे मोलंग अस्सवा वड़िगंबा मोला दिन वड़िगंबा रच खलांगे।

आज नेदरलैंड का उम्मीद सदा रखूँ देख रहे बड़ा ऑरेंज अंगे तो मेरे को चिल्लो नहीं कर रहे हैं ये नेदरलैंड की ऑरेंज गांव में खुले किस्से दें मिहार सिडन के गांव में शांति हो रहा है।

0: हंगार
1: अंगार दो हम इंद्र कोरी इकार गट फन रहे रिपीट इरे दिया गट तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होके रे मिंदम बार गट तेरी हूँ
0: हंगार हम एक अन्य दिवे ही राज्य के आडू
2: मैं आर गाड़ी फातिह हाथरे जे मैं दिवे राज्य के आडू